शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: ओ सिगनापुर का वासी है

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पहलू और गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार।

हजारों की भीड़ में कब वो अपना सा लगने लगा, जिसके बिना ना आंखों में ना दिल में करार। खोया खोया सा मन एक ही सवाल करता है, कब ये मिटेगी दूरी, कब होगा फिर दीदार इनका।

जीवन एक उपवन है। इस उपवन में रंग बिरंगे फूल है, उनकी सुगंध है, चहचाते परिंदे हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, नाचते मयूर हैं, गीत गाती कोयल है, सप्त रंग आकाश भी है, जगमगाते सितारे हैं, नौ रस से भरे सप्त सुर हैं, पल पल में घटता ढलता अनुराग है, ये सब हमारे कंधों के बोझ को हल्का करते हैं।

पत्तों की सरसराहट, हवा की खुशबू, फिजा की रंगत और मोहब्बत का जादू। हर शय हसीन हो जाता है, हर मुकाम जवान हो जाता है। तुम्हारा करीब होना इश्क की नई दास्तानें गढ़ता है, तब चांद भी जलकर कतरा कतरा पिघलता है।

0: पहले प्यार छलकता है दिल में मेरा, मधुर तेरा संग पाकर। नैनों से नैन मिले तो छाई गालों पर लाली, कभी वो आंखों से बात करते हैं और मुस्कुरा के हाले दिल बयां करते हैं। कभी सुर्ख होठों का कातिल अंदाज दिल चुराता है, तो कभी उनका छू जाना ही उनके बहुत करीब ले आता है।
1: तुम भी जलोगे आँख मलोगे रूप के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे आँख मलोगे रूप

0: रूठने मनाने वाले फूल बेहिसाब खिले होते हैं। दोस्ती में जिनकी खुशबू से सराबोर होती है सारी पकड़िंडी और महका करते हैं दिन रात। हाँ, इसकी राह इतनी आसान भी नहीं होती क्योंकि इसमें जुदाई के पत्थर भी होते हैं। मुझे मेरी जुदाई की उम्र याद तो नहीं, पर ये दर्द अब पुराना हो चला है।
1: ए लोगों के प्यार के किस्से सुनकर हंसता रहता था, तुम संग आंख लड़ी तो मैं जाना शायर सच कहता था कि रूठे रब को।

तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ

की जफाओं और वफाओं को क्या कहूँ और कैसे बयां करूँ। बीते लम्हों की वो यादें, कभी मुस्कुराहट बनकर खिला करती थी होंठों की वो गलियां, गलीचे अब बेगाने से लगते हैं। सामने वो है फिर भी दीदार को तरसती है आंखें। जफाए दोस्त हो या गम, मिले जमाने से हमारे दिल को अब तड़पना ही हर बहाने से।

0: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, और लेकर आई हूँ आज के कृषि समाचार। पत्तेदार सब्जियाँ 45 से 60 दिन, अन्य 90 से 110 दिन में हो जाती हैं तैयार। अगस्त सितंबर में कम अवधि वाली पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जियाँ उगाकर मुनाफा लें। किसान अगस्त सितंबर में कम अवधि वाली पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करके आय बढ़ा सकते हैं। मानसून के तुरंत बाद का मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। कम समय में तैयार होने वाली इन सब्जियों में मुख्य रूप से पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, चाइनीज कैबिज, ब्रोकली, मेथी और धनिया शामिल है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार, इन सब्जियों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकी और महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार फसलें बुवाई के मात्र 45 से 60 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की फसलें पनीरी खेत में लगाने के 90 से 110 दिन के भीतर बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। खेती की अच्छी जुताई, गोबर या जैविक खाद बढ़ाएगी उत्पादन। उन्नत किस्मों का चयन और बीज दर अच्छी पैदावार के लिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। पालक ऑल ग्रीन, जॉबनेर ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23 और पूसा ज्योति बेहतरीन किस्में हैं। बीज दर 5 से 7 किलो प्रति एकड़। फूल गोभी नंबर 1522, रिया, गिरजा, विशप और कैस्पर उन्नतिशील किस्में हैं। बीज दर 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ पनीरी के लिए। बंद गोभी प्राइट ऑफ इंडिया इसकी एक अत्यंत शानदार किस्म है। बीज 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ पनीरी के लिए। मेथी एवं धनिया, मेथी के लिए हिसार सोनाली व धनिया के लिए हिसार सुगंध, हिसार भूमित जैसी उन्नत किस्मों की बिजाई की जा सकती है। खेत के लिए तैयारी और जैविक उर्वरकों का प्रयोग। सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता और अधिकतम उत्पादन के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और उसमें जीवाश्म ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में गोबर की खाद, केचुआ खाद, जैविक खाद या मुर्गी खाद का प्रयोग अवश्य करें। बिजाई के बाद केचुए खाद से ढक देना चाहिए। बंड की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 90 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधशाला में कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। बीज की बिजाई के पश्चात उन्हें शुद्ध केचुआ खाद से ढकना बहुत लाभदायक रहता है। यह खाद सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जैसे मित्र फूफन से उपचारित होनी चाहिए, जो पौधों को बीमारियों से बचाती है। भूमि पर इस केचुए खाद की परत आधा से पौना इंच मोटी होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए पनीरी में हमेशा फवारा विधि द्वारा ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस मौसम में मक्का की फसल को तना छेदक और पत्ता अगमारी के प्रकोप से बचाना जरूरी। फसल में रोग से बचाव के लिए मेकोजेब घोल का छिड़काव करें। मक्का की फसल में पत्ता अगमारी व शीत अगमारी आदि बीमारियों का अत्यधिक प्रकोप होता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बी आर कंबोज ने बताया कि पत्ता अगमारी में प्रभावित पत्तों पर मोतीनुमा या सीधे निरंतर लंबे स्लेटी भूरे रंग के हरे पीले प्रभाव मंडल वाले धब्बे देखे जा सकते हैं। प्रमुख लक्षणों में डंडल पर पानी जैसे सफेद भूरे रंग के धब्बे बनना, डंडल का टूटना, सिल्क का अकड़ना और टूटना, दानों पर धब्बे बनना आदि शामिल है। संक्रमण बढ़ने के साथ हल्के भूरे रंग की फुफुंदी के साथ सरसों के बीज के आकार का काले रंग के स्केलोरेशिया भी देखे जा सकते हैं। यदि संक्रमण छल्ली तक पहुंचता है, रासायनिक विधि से पौधों पर 600 ग्राम मेंकोजेब इंडोफिल M45 का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस क्रिया को 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोहराएं। पौधों की निचली 2.3 पत्तियों को तोड़ने से भी शीत अगमारी रोग का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। मक्का में फॉल आर्मी वर्म से बचाव एवं प्रबंधन। मक्का में तना छेदक और फॉल आर्मी वर्म प्रमुख हानिकारक कीट हैं। इनमें फॉल आर्मी वर्म अत्यधिक हानिकारक एवं बहुभक्षी कीट है, जो कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी छोटी सुंडियां पत्तियों को खुरचकर खाती हैं, जिससे पिन के आकार के छोटे छेद दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों पर कागजी झिल्ली जैसे अथवा बड़े अनियमित छेद बन जाते हैं। सुंडी गोभ में मलमूत्र भी छोड़ती है। कीट का प्रकोप फसल की शुरुआती अवस्था में अधिक होता है, इसलिए फसलें उगाने के तुरंत बाद नियमित निरीक्षण करें और शुरुआती लक्षण दिखते ही उचित प्रबंध व रोकथाम के उपाय अपनाएं। खरपतवार नियंत्रण। HAU के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. महासिंह ने बताया कि मक्का में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 500 से 600 ग्राम एट्राजिन 50% WUP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन के बाद या मक्का अंकुरण से पहले छिड़काव करें। ऐसे करें कीट नियंत्रण। फॉल आर्मी वर्म कीट नियंत्रण के लिए फसल की छोटी अवस्था 3 से 4 सप्ताह में 5% आक्रमण पर व 5 से 7 सप्ताह की फसल में 10% आक्रमण पर नीम की निम्बोली का 5% घोल या अजाडी रिएक्टिन 1500 ppm नीम तेल 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मौसम, सुंडी और लागत ने बढ़ाया कपास में जोखिम। बाजरा, मूंग, गवार बने पसंद। दक्षिण हरियाणा के 3 प्रमुख जिलों में लगातार घटा कपास का रकबा। दक्षिणी हरियाणा की पहचान रही कपास की खेती अब लगातार सिमट रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी के किसान लागत, कम पैदावार, कीट प्रकोप और कमजोर भाव के कारण कपास से दूरी बना रहे हैं। बाजरा, मूंग और गवार जैसी फसलों को अब अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ में 2020 से 2021 में 18,000 हेक्टेयर में कपास बोई गई और 6,372 टन उत्पादन हुआ। 2025 से 2026 में रकबा घटकर 12,70,000 हेक्टेयर रह गया। रेवाड़ी में 2019 से 2020 के 7,65,000 हेक्टेयर के मुकाबले 2025 से 2026 में कपास का क्षेत्र सिर्फ 2,32,000 हेक्टेयर रह गया, यानी करीब 70% कमी। उत्पादन में भी स्थिर नहीं रहा। 2021 से 2022 में औसत पैदावार 208 किलोग्राम प्रति एकड़ थी, जो 2023 से 2024 में 4,047.9 किलोग्राम हुई, लेकिन 2025 से 2026 में फिर 3,039.8 किलोग्राम रह गई। चरखी दादरी में 2016 के 23,200 45 हेक्टेयर से घटकर अब कपास का रकबा लगभग 6000 हेक्टेयर रह गया है। 2025 में औसत उत्पादन 3075.35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। किसान क्यों बदल रहे हैं फसलें? कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव के अनुसार कपास की खेती में सबसे बड़ा संकट लागत और जोखिम का है। समय पर बारिश न होने पर सिंचाई खर्च बढ़ता है और अधिक बारिश होने पर फसल प्रभावित होती है। गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए कीटनाशकों पर खर्च बढ़ता है। बीज, खाद, मजदूरी और दवाओं की कीमत बढ़ने के साथ बाजार भाव में अनिश्चितता जोखिम बढ़ा देती है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
3: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
4: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
3: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
4: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
3: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
4: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
3: गणपति बप्पा मोरिया।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 11। आज का शीर्षक है हमारा पर्यावरण। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी।

आप सुन रहे हैं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, आपके जीवन का प्रवाह। आज का टॉपिक है हमारा पर्यावरण। बदलते वक्त के साथ न केवल मौसम में बदलाव आते हैं बल्कि हमारी जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। पर्यावरण की जो अवस्था हमने बना दी है उसमें सुधार भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अब लौटाने की बारी हमारी। तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, ये केवल एक मौसमी बदलाव नहीं है बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का लक्षण है। पहले जहां गर्मी का प्रकोप केवल मैदानी क्षेत्रों तक सीमित रहता था, अब ये धीरे धीरे पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने लगा है। जो स्थान कभी शीतलता और हरियाली के लिए जाने जाते थे, अब वहां भी तापमान असामान्य रूप से बढ़ने लगा है। ये बदलाव सिर्फ इंसानों को नहीं प्रभावित कर रहा है बल्कि वहाँ के पक्षियों और संपर्ण प्रतितरण पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है। हम इसकी वजह है। असल में जलवायु परिवर्तन के लिए हम मनुष्य जिम्मेदार है, खासकर जब हम घरों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों में तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो वातावरण में गर्मी को पकड़ लेती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब से मानव ने बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू किया, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगभग 50% बढ़ चुका है, जो पृथ्वी के इतिहास में अप्रत्याशित रूप से उच्च है। अब तक हमने धरती से सब कुछ लिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम कुछ पहल करें। कुछ योगदान घर से भी किया जा सकते हैं। यदि घर के पीछे या सामने पर्याप्त जगह है तो वहां नीम, बरगद, जामुन के पेड़ लगाकर 10-20% तक ऑक्सीजन स्तर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पेड़ ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से बढ़ सकें, बिजली के तार जैसे रुकावटें ना हो। इस पहल में बच्चों को साथ रखें। नंबर 2, घर के आसपास झाड़ीनुमा पेड़ लगाएं। ये छोटे पेड़ घर के आसपास की हवा को शुद्ध रखेंगे और तापमान को कुछ कम। नंबर 3, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता वर्ष 2021 में 1486 घन मीटर थी, जो वर्ष 2031 में घटकर 1367 घन मीटर रह जाएगी। इसलिए मोहल्ले में एक समिति बनाएं जो समय समय पर सभी पाइपलाइन का ध्यान रखे। पानी लीकेज होने या लोगों द्वारा व्यर्थ बहाने पर तत्काल कदम उठाए। जहां तक हो सके घर के भीतर प्राकृतिक रूप से ठंडक बढ़ाएं। खस की पट्टी व हरे मोटे पर्दे लगा सकते हैं। छत पर सफेद पेंट करके घर के तापमान को 2 डिग्री तक कम किया जा सकता है। इससे बिजली की खपत भी कम होगी और बिल का भार भी कम हो जाएगा। जब भी ट्रेन या बस से कहीं बाहर जाएं तो आम, जामुन जैसे पेड़ों के बीज साथ रखें और उन्हें रास्ते में बीच में डालते जाएं ताकि बरसात में अंकुर फूटकर भविष्य में बड़ा वृक्ष बन सके। छत पर सोलर पैनल लगाएं, LED बल्ब या प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा उपयोग करें। रसायनों से जितनी दूरी बना सके उतना बेहतर होगा। घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, छत का पानी वापस धरती के अंदर भेजना होना चाहिए। इससे ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाते हैं और भूजल का स्तर भी बना रहता है। मौसमी फल सब्जियां न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छी है बल्कि इसे लंबे ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। प्लास्टिक भी पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं। कपड़े की थैली, मिट्टी, कांच या स्टील के बर्तन, बांस से बने ब्रश आदि प्रयोग करें। रसोई से निकलने वाले कचरे से खाद तैयार करके पौधों में उपयोग करें। इससे कचरा भी कम होगा। अपने शहर के तालाब, नदी, नहर आदि को साफ रखें। अगर हर व्यक्ति साल में 1 या 2 पेड़ भी लगाए तो उसका बहुत बड़ा सकारात्मक असर आने वाले वर्षों में दिखेगा। ये था आज का टॉपिक हमारा पर्यावरण। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचा के रखना है ताकि अगली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करे। अगर हर व्यक्ति 1-1 पेड़ लगाए तो एक दिन जो ये धरती है पेड़ों से भरी रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
2: चिट्ठी न कोई संदेश,
1: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग PWD में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे, और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई, और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर

0: वो छोटी सी रात वो लंबी
1: उनकी गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पार गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से संजीदा जज्बात से सजाया जा रहा है।

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

सन 1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं, गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह पर एक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता रमेश मरहटा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी किरणी का नमस्कार। सुनहरे पल का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक महान वर्सटाइल गायक मोहम्मद रफी साहब के बारे में और सुनेंगे उनके गाए हुए गीत।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।
0: मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के पास कोटला सुल्तान में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके बाद उनका परिवार 1932 में लाहौर चला गया। लाहौर में अपने होने वाले जीजा की मदद से रफी साहब मुंबई आए, जहां उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। रफी ने अपना पहला गाना श्याम सुंदर की फिल्म गांवों की गोरी के लिए गाया। इस गाने को उन्होंने जीएम दुरानी के साथ मिलकर गाया था। लोगों का मानना था कि मोहम्मद रफी की आवाज शमी कपूर पर सबसे ज्यादा फपती थी, लेकिन मोहम्मद रफी के पसंदीदा एक्टर शमी कपूर नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार थे, जिनको टीवी पर देखते ही रफी मानो खो से जाते थे।

एक बार संजय गांधी किशोर कुमार से बेहद नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने और किशोर कुमार को संजय गांधी के गुस्से से बचाने के लिए खुद मोहम्मद रफी ने खास तौर से संजय गांधी से मुलाकात की थी। रफी की गायकी के लिए मोहब्बत को इसी से समझा जा सकता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब उस समय उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया था। ऐसे में रफी ने ये फैसला किया कि वो अपने पहले प्यार यानी सिंगिंग के खातिर मुंबई में ही रुकेंगे, जिसके बाद वो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गई।

मोहम्मद रफी पार्श्व गायक बन गए, पहचान भी हो गई, लेकिन अभी उनकी पहचान जनता को दीवाना बना दे ऐसे गायक की नहीं थी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला। हुआ यूं कि फिल्म भेजू बावरा बन रही थी, संगीतकार नौशाद फिल्म के गाने तलत महमूद से गवाने वाले थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तलत महमूद को सिगार पीते देख लिया। एक गायक सिगरेट पिए उन्हें ये पसंद नहीं था, सो उन्होंने रफी साहब को मौका दिया। बेजू बावरा के गीतों ने इतना तहलका मचाया कि मोहम्मद रफी रातों रात लोगों के चहेते गायक बन गए। रफी बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। शर्मीले इतने थे कि रफी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं कि रफी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो इंटरव्यू दिए थे।

वैसे तो रफी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर है, लेकिन ये किस्सा नौशाद साहब ने खुद सुनाया था। हुआ यूं कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई और न ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफी का बेजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वो गाना बजाया गया। वैसे बता दे कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिनों तक रियाज किया और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रफी शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकेंगे।

फिल्म नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।

हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफी के बेटू ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी। तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। रफी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। न किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे, ना ही सिगरेट पीते थे। पार्टियों का शौक भी नहीं था, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो एक रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे।

रफी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वह इंसान बड़े थे या कलाकार। मोहम्मद रफी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल गढ़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कवाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ है और न कभी होगा।

उत्तर भारत में कोई बारात नागिन डांस के बिना नहीं निकलती, लेकिन ये भी सच है कि बारात में आज मेरे यार की शादी है भी अनिवार्य रूप से गाया जाता है। आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत रफी साहब ने गाया है। उनका एक और गीत जात पात और धर्म का भेद किए बिना बारातों में खूब गाया जाता है। ये गाना दोस्ती की तरफ से नए दुल्हे की शान में कसीदे पढ़ने के अंदाज से गाया जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देशभक्ति के गीत का इस्तेमाल जिसने भी दुल्हे के लिए पहली बार किया था उसे 100 तोपों की सलामी। एक और किस्सा अमिताभ से सुनिए। 2 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन रफी साहब गा चुके थे। दूसरे दिन सुबह हमें पता चला कि आज जिन गायक का प्रोग्राम है वो नहीं आ रहे हैं। रफी साहब एयरपोर्ट जा चुके थे। हम लोगों ने एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाई। प्लेन उड़ने ही वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन करके प्लेन में पहुंचे और रफी साहब को समस्या बताई। रफी साहब बिना कुछ कहे तत्काल हमारे साथ नीचे उतर आए। इस तरह हम परेशानी में फंसने से बच गए। बता दे, रफी साहब को अमिताभ की दीवार बहुत पसंद थी।

मोहम्मद रफी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आई थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। मोहम्मद रफी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर

बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, उतना ही कम है। उनकी आवाज उनके गानों की तरह ही अमर हो गई। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। और जाने से पहले मोहम्मद रफी की गाई हुई दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का कार्यक्रम आधारित था सदाबहार गायक मोहम्मद रफी साहब पर। प्रस्तुत किया आरजे किरली ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं डॉक्टर नूपुर सिंह, जो FM 90.0 MHz के उद्घाटन पर शुभकामनाएं देने दिल्ली से आए थे। उनसे बात करेंगे श्री नरेश शर्मा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता 90.0 FM। और बेहद ही खुशी की बात है, रेडियो वितस्ता अब और आज से कम्युनिटी रेडियो बन चुका है और आप हमारी हर आवाज को सुन सकते हैं 90.0 FM पर। वही नाम लेकिन कुछ नए अंदाज के साथ में हम पेश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, आज हमारा जो उद्घाटन है आज के प्रोग्राम का, आज से हम लोग कम्युनिटी रेडियो के दायरे में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर दो शख्सियतों का विशेष रूप से उल्लेख करना पसंद करूँगा। पहली शख्सियत है हमारे मेंटर श्री रमेश मराठा जी। एक वो आवाज़ जिससे हमने बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहे हैं और उम्मीद है जब तक जिंदा रहेंगे हम इनसे सीखते रहेंगे। इनको सुनता हूं तो लगता है कि सागर की गहराइयों से कोई आवाज देकर एहसास दिला रहा है कि फीलिंग्स किसको कहते हैं। और दूसरी आवाज जो विशेष रूप से दिल्ली

0: से आज इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हुई हैं नूपुर सिंह जी। नूपुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम के पहले प्रसारण के बीच में और आज इस विशेष अवसर के ऊपर। करीब 3-4 साल पहले हमने इनसे एक इंटरव्यू की थी, उनकी आवाज, उनका अंदाज आज भी उसी तरह से हमारे कानों में गूंज रहा है। ये तो हमारे साथ जो बीत रही है, बीती है, वो आइए जानना चाहता हूं कि नूपुर जी, ये पिछले 3 साल से कुछ ज्यादा अरसा हो गया है आपको रेडियो विदस्ता के साथ जुड़े हुए, कैसा महसूस करती हैं आप इस परिवार के साथ जुड़ने के पश्चात और क्या प्रभाव किसने आपके ऊपर डाला है? आपके मन में एक रेडियो की छवि थी जो मैं समझता हूं कुछ और थी, अब आप रेडियो के विषय में क्या सोचती हैं?
1: सबसे पहले तो थैंक्स बोलती हूँ कि मैं जुड़ी हूँ रेडियो विदस्ता से, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि जब पहली बार मैं कनेक्ट हुई थी आप लोगों से, और जिस समय तो कहीं मन में एक अंदेशा था कि कहाँ बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन है, कैसे है, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ और उसके बाद जब सब कुछ ब्रॉडकास्ट हुआ तो एक अलग ही चीज निकल के आई थी जो आज तक कहीं मन के बहुत गहराई तक है, वो मुझे छू गया। और दूसरी बात ये है कि जो रेडियो विदस्ता के थ्रू जो आपके साथ मेरा संबंध रहा, या फिर हमारे जो द ग्रेट भरत सुपोरी जी हैं उनके साथ, वो एक अलग ही रिलेशन है मेरा, वो उसको डिफाइन करना मुश्किल है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मन के भाव से है, बहुत गहराई से। और वो जर्नी अभी तक की बहुत ही खूबसूरत मेमोरी के रूप में है मेरे लिए। अभी तक का जो देखती हूँ आप लोगों का जो ये रेडियो विदस्ता का रहा सब कुछ, बहुत ही सुंदर अब तक की जर्नी है इसकी, बहुत ही सुंदर रही है, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने उसको सुंदर बनाया, रचा है, इतनी मेहनत करके इतने सारे लाइव शोज देखे, जिसमें फेसबुक हो या किसी भी सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे आपको, बहुत ही ज्यादा डेप्थ में इतनी मेहनत से लोगों को कनेक्ट करके, और सब एंजॉय भी करते थे। कितने आर्टिस्ट आपके प्लेटफॉर्म पर आ गए, कितने सारे कवि आ गए, कितने सारे हास्य कलाकार, मेरे ख्याल से शायद मैंने, मुझे लगता है शायद मैंने सुना था कुछ, तो वो उस तरह के लोग भी आए हैं। तो जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है ये बहुत ही अलग है। हम लोग आकाशवाणी में होते हैं, मैं तो ऑलमोस्ट हर मंथ मेरी रिकॉर्डिंग्स वहां होती रहती हैं, लेकिन जो आप लोगों के साथ है ये कुछ और ही है।
0: देखिए, आपने जिक्र किया अभी भरत सपोरी हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रेडियो विदस्ता के, उनका मेरे पास कोई शक नहीं है कि मैं भरत सपोरी जी का कोई शुक्रिया अदा कर सकूं। क्यों? इन्होंने यकीन मानिए कि लोग अपने बच्चे को पालने में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, इन्होंने रेडियो स्टेशन रेडियो विदस्ता को पालने में, रेडियो विदस्ता को खड़ा करने में अपनी जिंदगी का एक अहम समय इसके बीच में दिया
1: जी।
0: कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं कि भरत सपोरी इस परिचय से यहां पर इनका परिचय हो सकता है। क्यों? जितना कुछ इनके पास में था इन्होंने सब कुछ सिर्फ रेडियो के उत्थान के लिए लगाया। रही बात यह कि कार्यक्रमों की, हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, आपने भी सुना लॉकडाउन के दौरान से पहले का सिलसिला चलता चला आ रहा है। मुझे तो ईश्वर की एक बहुत अनुकंपा मेरे ऊपर रही है कि जब पहले मैंने प्रोग्राम आपके साथ में किया था उस टाइम नूपुर सिंह एक हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हुआ करती थी, शायद ताज्जुब हो रहा होगा मेरे शब्दों पे कि हुआ करती थी, तो हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका हुआ करती थी नूपुर सिंह, जिनके नाम का डंका बजता था उनकी गायकी में। और अनुकंपा जो ईश्वर की मेरे ऊपर रही है वो ये कि आज वो हिंदुस्तान की जानी मानी गायिका मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने बैठी है और इस विशेष अवसर के ऊपर हमें विशेष तौर से बधाई देने के लिए दिल्ली से यहाँ आई है। प्रसन्नता का मतलब आप आलम न पूछिए, शब्द नहीं रहे हैं कि किस तरह से व्याख्यान करूं। थैंक यू बोलूंगा नहीं, क्योंकि बेटियों को शुक्रिया नहीं कहा जाता। हाँ, धन्यवाद जरूर कहूंगा कि आप यहाँ पर आए। उस वक्त भी आपने अपनी झलक छोड़ी और वो छाप जो छोड़ी ना अपने प्रोग्राम्स के दौरान, आज भी लोग बार बार आग्रह करते हैं कि हमको वो नूपुर जी वाला प्रोग्राम सुनाइए, वो नूपुर जी वाला प्रोग्राम सुनाइए। आइए आज उनकी एक गलत फहमी दूर किए देते हैं। तो आइए चंद लाइनें किसी भी गीत की बिना किसी संगीत के हमको सुनाते हैं, आपको बता देते हैं कि नहीं, ये साक्षात नूपुर सिंह ही हैं जो सामने बैठी। कुछ सुनाना चाहिए
1: क्यों नहीं, बड़ा मेरी खुश नसीबी है कि मैं कनेक्ट हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है। बहुत स्नेह है आपका। एक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना लाइफ में क्या मायने रखता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं कोशिश करती हूँ दो शब्द कुछ भी, वैसे सोचा तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कुछ। एक ही गाना है सदाबहार जो हमेशा मुझे फर्स्ट जब भी सोचती हूँ तो उसकी ही झलक आती है, उसके बाद कुछ और आता है।

0: वास्तव में इसमें कोई शक नहीं है कि माँ सरस्वती ने विशेष रूप से आपके गले में ही आकर वास किया है। बहुत ही खूबसूरत गाती हैं आप। हाँ, ये एक बात जरूर कहूंगा कि इतना सुनने के बाद जो जितने हमारे श्रोता है ना, वो चाह रहे होंगे शर्मा जी आप चुप कीजिए ना, नूपुर जी से कहिए ना कुछ और सुनाए। तो मैं जानता हूँ कि आप हमारी मेहमान हैं, मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं बिना किसी साज के, बिना किसी साजिंदों के, बिना किसी म्यूजिक के आपको बार बार कहूँ कि आप कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो वो जो आपने सुनाया है अभी, बेहद ही खूबसूरत गीत लग जा गले से, वो शायद आपने हमारी फरमाइश में सुनाया था। एक आखिरी बार मैं कहूँगा, एक आखिरी फरमाइश इन श्रोताओं की जो आज विशेष रूप से हमारे इस विशेष उद्घाटन के अवसर के ऊपर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके आग्रह के ऊपर कुछ भी चाहे दो ही लाइनें सुना दीजिए। मेरा वादा है इसके बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप तीसरी बार फिर गाइए, थोड़ा सा सुना दीजिए, फिर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर कार्यक्रम को समापन की ओर धीरे धीरे आगे ले जाएंगे।
1: जी, कोशिश करते हैं। एक आशा जी ने गाया हुआ है, एक उनकी गजल है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी।
1: सलोनों सा सजन है और मैं

0: सजन है और मैं
1: बहुत खूब, बेहद ही खूबसूरत। तो आज तो क्योंकि बहुत उद्घाटन का अवसर है, बहुत भाग दौड़ मची हुई है, सब तरफ भागा दौड़ी का माहौल है, हम फिर किस दिन आपको नूपुर जी के साथ में साक्षात्कार का पूरा अंश दिखाएंगे। आज इस थोड़े से अंश के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। मैं नूपुर जी का धन्यवाद करना नहीं भूलूंगा। नूपुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में विशेष रूप से आज आए, आपने बहुत कृपा की, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और हम ये चाहेंगे ये साथ जो आपका हमारा बना है ये सदियों तक इस तरह से बना रहे और इसके पश्चात नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ी गई। तो नूपुर जी, आप हमारे सुनने वालों को इस विशेष अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आज मैं उपस्थित हूँ 90.0 FM रेडियो वितस्ता के शानदार स्टूडियो में और मेरा बड़ा सौभाग्य कि आज मेरे साथ मेरे बहुत ही प्रिय नरेश शर्मा जी हैं और भरत सकोरी जी हैं यहाँ पर, और मैं आप सभी सुनने वालों को 90.0 FM रेडियो वितस्ता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।
1: थैंक यू वेरी मच नूपुर जी और थैंक यू वेरी मच सकोरी सर, आपने मुझे मौका दिया कि इतनी बड़ी गायिका के साथ में बैठकर मुझे एक साक्षात करने का, और हम श्रोताओं का मनोरंजन करते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे डॉक्टर नूपुर सिंह। उनसे बात की नरेश शर्मा जी ने। निर्देशक भारत सुपोरी। ये थी 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिले दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बगत।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर एंजॉयिंग 90.0 एफएम रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: टाइम है, फुकड़ दिन ना तो तू।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदा ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

देश है अपना, देश है अपना, देश है अपना, देश है आज से सब रहे थे लाज से, अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से, दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से, उनके तख्त ताज से कट गया है अब।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
4: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
5: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
4: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
5: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
4: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
5: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
4: गणपति बप्पा मोरिया।
6: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सब्जियों की खेती के लिए प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक से पौध तैयार करें, मजबूत होंगी जड़ें। रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को धूप में रखें और सिंचाई कम करें। सब्जियों की अगेती खेती और बम्पर पैदावार के लिए स्वस्थ पौध जरूरी है। जमीन की क्यारियों में पौध तैयार करने पर बीजों का अंकुरण कम होता है, जड़ें टूटती हैं और मृदा जनित फफूंद का खतरा बना रहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार इस समस्या का सटीक आधुनिक समाधान प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक है। बेहतर परिणामों के लिए पॉन्टिंग मिश्रण के सही अनुपात के साथ साथ कुछ मुख्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को शेड से बाहर खुली धूप में रखें और सिंचाई कम करें। 25 से 35 दिनों में जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं, तब शाम के समय खेत में रोपाई करें। 70% कोकोपीट 30% केचुआ खाद का उपयोग करें। प्रो ट्रे टमाटर बैंगन मिर्च और शिमला मिर्च के लिए 99 खांचों वाली प्लास्टिक ट्रे सर्वोत्तम रहती है। पुरानी ट्रे का दोबारा इस्तेमाल करते समय उसे फफूंदनाशी घोल या साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। पॉन्टिंग माध्यम 3 भाग अच्छी तरह धुली हुई कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और 1 भाग परलाइट का मिश्रण आदर्श माना जाता है। सामान्य विकल्प के रूप में 70% कोकोपीट और 30% बारीक छनी हुई केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। खांचे के बीच में गहरा खड्डा बनाकर बीज डालें। कोकोपीट की धुलाई, कोकोपीट बिक्र को पानी में डालकर अच्छी तरह फुलाएं और 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। ट्रे भरना, तैयार मिश्रण को प्रो ट्रे के सभी खांचों में एक समान भरें। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं ताकि हवा का संचार बना रहे। रोपण, प्रत्येक खांचे के केंद्र में 0.5 से एक सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाकर एक एक प्रमाणित बीज डालें। बीजों को ऊपर से कोकोपीट की हल्की परत से ढक दें। हल्की सिंचाई, बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे, हल्की सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे या स्प्रे पंप से पानी दें ताकि बीज जगह से ना हिले। प्रबंधन व देखरेख, ट्रे को 3 से 4 दिन के लिए काली पॉलीथीन से ढकें। अंकुरण चैम्बर प्रभाव, बुवाई के बाद 4 से 5 ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर ऊपर से काली पॉलीथीन से 3 से 4 दिन के लिए ढक दें। इससे नमी और उचित तापमान मिलने से 95% से अधिक अंकुरण एक साथ होता है। धूप और सिंचाई, अंकुर मिलने लगे तो ट्रे को अलग अलग करके नेट हाउस या पॉली हाउस में धूप में रखें। सुबह आवश्यकता अनुसार हल्का पानी दें। पोषण, बुवाई के 12 से 15 दिन बाद 2 ग्राम 19:19:19 एनपीके प्रति लीटर पानी में घोलकर हल्का छिड़काव करें। मॉनसून में लौकी की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा किसान लगातार नजर रखें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियों व सड़े फलों को तोड़कर खेत से बाहर फेंकें। मॉनसून में लौकी की फसल पर फफूंद जनित एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा सामने आया है। ऐसे में रोग का प्रकोप बढ़ने पर किसानों की पैदावार और आय पर सीधा असर पड़ सकता है। करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र के संधीर गांव और आसपास के खेतों में रोग के लक्षण मिलने के बाद उद्यान विभाग ने किसानों को फसल प्रबंधन की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में करीब 20,474 हेक्टेयर क्षेत्र में लौकी की फसल होती है। पत्तियों पर भूरे धब्बे फल भी हो सकते हैं। प्रभावित एंथ्रेक्नोज की शुरुआती पत्तियों पर छोटे हल्के पीले अथवा पानी से भीगे हुए भूरे धब्बों से होती है। संक्रमण बढ़ने पर ये धब्बे गहरे कत्थई या काले रंग के हो जाते हैं। प्रभावित हिस्सा सूखकर छेद जैसा दिखाई दे सकता है और गंभीर स्थिति में पत्तियां झुलसने लगती हैं। रोग बढ़ने पर बेल की टहनियों और कच्चे फलों पर भी काले धब्बे बन सकते हैं। फल में सड़न शुरू होने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है और मंडी में कम भाव मिलने की आशंका रहती है। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर सप्लाई, हरियाणा में लौकी समेत कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दिल्ली NCR की नजदीक की मंडियों के कारण करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन है। 20,474 हेक्टेयर में लौकी फसल होती है। पिछले साल 2.86 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए थियोफिनेट मिथाइल 70% WUP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। खेत में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियां और सड़े हुए फलों को तोड़कर खेत से बाहर नष्ट करने की सलाह भी दी गई है ताकि संक्रमण दूसरे पौधों तक ना फैले। खेत में नमी नहीं बढ़ने दें। विभाग से संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र विशेष डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि बारिश के बाद खेतों में नमी और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी की बूंदें बनी रहने से फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। किसानों को नियमित रूप से पत्तियों और बेल फलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है। लक्षण दिखने पर विभागीय सिफारिश के अनुसार उपचार करने से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तोरियों की बुवाई से पहले खेत तैयार करें। उन्नत बीज व खाद का रखें प्रबंध। उन्नत किस्म संगम TL15 और TH68 का करें उपयोग। तोरियों की बिजाई के लिए खेत को तैयार कर लें। तोरियों की उन्नत किस्म संगम TL15 या TH68 के बीज का प्रबंध कर लें। चौधरी चरण

10 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। खड़ी फसल में कमी दिखने पर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। सूडान घास की कटाई करें। सूडान घास व संकर हाथी घास की हरे चारे के लिए कटाई करें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। प्रत्येक कटाई के बाद 22 किलोग्राम व 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से क्रमशः सूडान घास व संकर हाथी घास में दें। ज्वार व बाजरे की चारे वाली फसलों में बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 22 किलोग्राम अथवा मकचरी में 44 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रूपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रूपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रूपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रूपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कौन?
1: ये वो लड़की।
2: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, वो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल।
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।
0: देखो बेल बॉटम गालों पे डिंपल, हल्का सा गालो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

धड़क धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

0: याने याने प्यार हो गया।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: भारत की जवानी। जी हां श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर

0: हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता, अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन।

0: बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और

को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

यही पैगाम पहुंचाए। खुला बोर मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
0: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साई 7 बजे।
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साई 8 बजे।
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर अरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से, सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
2: आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार नमस्कार। आज से 4 साल पहले रेडियो वितस्ता के इस पौधे का रोपण किया गया था, और इन 4 सालों में हमने अपनी कला से, अपनी मेहनत से इसको बहुत सींचा है। और इसको सींचने के बीच में रेडियो वितस्ता के फाउंडर डायरेक्टर भरत सपोरी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और दोस्तों, इसको सींचते सींचते आज ये इस अवस्था के बीच में आ गया है कि आज ये बहुत बढ़िया फल भी दे रहा है और इसकी खुशबू भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य के बीच में रेडियो वितस्ता के 4 वर्ष पूरे होने पर आज हमने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, महिला काव्य गोष्ठी। और आज के इस कार्यक्रम के बीच में हमारे साथ जानी मानी कवियत्रियां मौजूद हैं। मैं सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मौजूद मेहमान दिया शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूँ।
3: धन्यवाद सर।
2: और इनके साथ हैं अंजलि सिफर। आप ये सोचिएगा, सिफर, इस सिफर में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर सिफर ना हो तो महत्व ही नहीं होता अंकों का। जब सिफर लगती है तो अपने महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अंजलि सिफर जी का रेडियो वितस्ता के आज के इस विशेष कार्यक्रम के बीच में।
3: बहुत शुक्रिया।
2: और इन दोनों के साथ में एक ऐसी खूबसूरत आवाज हमारे साथ में है जो आपको महकने पर मजबूर कर देगी, और वो बहुत दिव्य आवाज है, दिव्या भसीन कोछड़ जी।
3: बहुत शुक्रिया।
2: हमारे साथ ये 3 हस्तियां हैं जो आज काफी कुछ करेंगी, कुछ बातें करेंगे इनके साथ में, कुछ खट्टी मीठी इनसे इनके अनुभव जानेंगे और साथ में इनकी कला का हम आनंद उठाएंगे। तो मैं सबका परिचय दे चुका हूँ। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का शीर्षक है सफर एहसासों का। तो सफर एहसासों का के बीच में हमारे सभी दर्शकों का और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक परिचय से करवाता हूँ, और वो परिचय है दिव्या भसीन कोछड़ जी का।
4: हमारा आज है जो कल, वही इतिहास होगा फिर। हमारा आज है जो कल, वही इतिहास होगा फिर। नई पीढ़ी को दे पाए क्या ये एहसास होगा फिर। नई पीढ़ी को दे पाए क्या ये एहसास होगा फिर। अगर भाषा या मजहब पर झगड़ते रह गए हम तो, अगर भाषा या मजहब पर झगड़ते रह गए हम तो, नहीं रस खान गालिब और न तुलसीदास होगा फिर। नहीं रस खान गालिब और न तुलसीदास होगा फिर।
2: वाह क्या बात है, नहीं रस खान न तुलसीदास होगा
3: फिर। बहुत शुक्रिया सर।
2: बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज के बीच में आपने पेश किया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप सभी को और अपने सुनने वालों और जो हमारे दर्शक है उनको भी, शंख तुम चुन लो सीप मैं चुन लू, शंख तुम चुन लो सीप मैं चुन लू, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। शंख तुम चुम लो सीप मैं चुम लू, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। रेडियो वितस्ता की खुशबू को सहज लो दिल में, रेडियो वितस्ता की खुशबू को सहज लो दिल में, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। क्या
3: बहुत अच्छे सर।
2: तो अभी आपको परिचय के रूप में मैंने आपके सामने पेश किया जो हमारे आज की मेहमान दिव्या भसीन कोछड़ जी हैं, और इनके साथ मैंने आपको जैसा पहले परिचय दिया ही था कि हमारे साथ हैं दिया शर्मा। दिया, अपने आप में ही एक रोशनी है और ये जहां से शुरू होती है वहां से अंधकार को दूर कर देती है। तो कला के रूप में अपनी रोशनी को बहुत जगह बिखेर चुकी है और आज उसी रोशनी से हम सबको प्रज्वलित करने के लिए रेडियो विदस्ता के स्टूडियो के बीच विशेष कार्यक्रम में मौजूद है। आइए सुनते हैं दिया शर्मा जी। दिया जी कैसी हैं आप?
3: मैं कैसी हूँ? बेहद खूबसूरत किताब से। वाह, बेहद खूबसूरत किताब से हूँ जिसमें अनगिनत पन्ने हैं।
5: क्या बात है,
3: जिन पर अनगिनत ख्वाब, ख्याल, खूबसूरत एहसास हर एक पन्ने पर स्याही ने बिखेर रखे। बेहद खूबसूरत किताब से।
2: वाह वाह, क्या बात है, बहुत।
3: वह किताब जो अच्छे पाठकों को बेहद पसंद हो, वह किताब जो अच्छे पाठकों को बेहद पसंद हो, जैसे अमृता प्रीतम का इश्क हो।
2: वाह वाह,
3: जिंदगी के हर पड़ाव को झेलती हुई, अल्हड़ सी, नादान सी, और कभी कभी कहीं कहीं बेहद परिपक्व भी, कभी सूखे पतझड़ सी, कभी वासंती बहारों सी, कभी कभी पुरवैया की मदमस्त बयारों सी, और कभी सावन की ठंडी फुहारों सी, और कभी कभी सर्दी की ठिठुरन सी, और कभी सर्दी में जलता अलाव सी, और कभी कभी ठंडी छांव सी, और भी न जाने क्या क्या, कितना कुछ। सचमुच मैं बेहद खूबसूरत किताब से।
2: क्या बात है, सचमुच मैं बहुत खूबसूरत।
3: जिसके एक पन्ने को पढ़ो तो अगले पन्ने पढ़ने को जी जाए। बिल्कुल वही किताब। हाँ, सब कुछ है इस किताब में, सब कुछ, मगर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कवर पेज, जिसको जिल्द कहते हैं, मतलब कवर पेज नहीं है बस इस किताब का, कुछ पन्ने हैं बस, वही किताब है। बाकी किताब बेशानदार और जानदार है। अरे हाँ, कोई नाम भी तो नहीं है ना इस किताब का, और भला हो भी कैसे, नाम तो जिल्द पर होता है, मतलब कवर पेज पर होता है ना, और जिल्द तो है ही नहीं, मतलब कवर पेज तो है ही नहीं। खैर, फिर भी खूबसूरत किताब बिना जिल्द के।
2: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या जवाब। दर्शकों, देखा आपने इस खूबसूरत किताब जिसका नाम दिया शर्मा है, इसने अपने चंद शब्दों से ही सारे मौसमों का एहसास करा दिया। गर्मी भी, सर्दी भी, बरसात भी, ठंड की ठिठुरन भी, और एहसासों की तपिश भी, क्या नहीं छुरा। खैर, बहुत खूब दिया जी, और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मधुर स्वर के बीच में सुनते हैं हमारी अगली मेहमान अंजलि सिफर जी।
6: एक कलाकार का परिचय शायद उसका सुखन बेहतरीन उसका परिचय है, तो मैं अपने सुखन की बात करती हूँ। सुखन मेरा मेरे मन के मनकों की है एक माला, कहीं हिंदी कहीं उर्दू का मोती इसमें है डाला। लिया एक प्रेम का धागा, मोहब्बत की गिरह बांधी, विचारों की ही अभिव्यक्ति को है अल्फाज में ढाला। विचारों की ही अभिव्यक्ति को है अल्फाज में ढाला।
2: बहुत ही गहरी बात अब कह गए हैं अंजलि सिफर जी के, विचारों की अभिव्यक्ति को, क्या बात है, इन्होंने शब्दों में ढालकर हमें सामने पेश किया। और दोस्तों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ये जो तीन हस्तियां हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत का सिलसिला भी होना चाहिए ताकि हम इनको थोड़ा सा जान पाए, पहचान पाए। इनकी कला तो हमारे सामने आ ही रही है, तो जान पहचान का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मेरे बाईं तरफ जो बैठी हुई हैं हमारी आज की मेहमान दिव्या हसीन कोछड़ जी। दिव्या जी, आप अब इसके पश्चात हमें क्या सुनाएंगी?
5: जो कहेंगे सर।
2: पसंद आपकी है, लिखनी आपकी है, जो आप चाहें वो बताइए कि हाँ ये मैं सुनाना चाहती हूँ। ईश्वर ने आपको कई चीजों से नवाजा है, यानी खूबसूरत आवाज, खूबसूरत कला और उसके साथ में खूबसूरती। क्या कभी आपने किसी के साथ प्यार किया है?
5: मतलब माता पिता अपने और अपने बच्चों से, अपने पति देव से, अपने परिवार से, और जो जो मुझे अच्छा लगा जिंदगी में, मेरे दादा दादी जिनके मैं बहुत करीब रही।
2: तो आइए पहले सुनते हैं वो जो आप सुनाना चाहते हैं।
5: जी सर, एक छंद है। घर में बंटवारे की स्थिति हर किसी के घर में होती है, लेकिन ये बंटवारा कभी कभी तो आपसी साझेदारी से होता है और कभी कभी मन भेद और मतभेद के साथ होता है। तब कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है।
2: जी पेश कीजिए।
5: कि खून आंख भर आया, शत्रु लगे मां का जाया, भाई भाई के अलग क्यों विचार हो गए, शब्दों के लगे तीर बढ़ती गई थी पीर, टूट कर एक से दो परिवार हो गए, रिश्तों के खून सनी मिली हमें देहरी भी, चीखते थे चोटिल जो सब द्वार हो गए, और आंगन खड़ी दीवार देख रही मालाचार, सोचती गलत कहां संस्कार हो गए, सोचती गलत कहां संस्कार हो गए।
2: बहुत वास्तविक बात आपने वो कही है जो आजकल हमारे जीवन के बीच में घटित होती है। कहां पर संस्कार

0: गम परेशानी गुर्बत करे दूर जो किसी का, रेडियो विदस्ता बने आपके दिल की आवाज। रेडियो विदस्ता बने आपके दिल की आवाज। आप भी बार बार कहें यही है, यही है, यही है हम सफर जिंदगी का, हम सफर जिंदगी का। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को लेकर। सुनते हैं अंजलि सिफर जी को। अंजलि जी, आप अपनी जो भी रचना कहना चाहेंगी। आप काफी अनुभवी हैं, बहुत जगह के ऊपर आप कार्यक्रम दे चुकी हैं और देती रहती हैं। अपने जीवन की कोई ऐसी घटना मुझे बताइए कार्यक्रम के दौरान जो आपको अभी तक ना भूली।
1: ये तो इस तरह से बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने जो मेरा ये सफर शुरू हुआ जिससे लेखनी का, उससे जुड़ी एक घटना ये जरूर मैं साझा करना चाहूंगी कि एक कविता मैंने भेजी अखबार में छपने के लिए, और शाम को ही मुझे एक फोन आता है कि क्या आपने अपनी कविता पढ़ी। तो मैं हैरान हुई कि तो मैंने आज सुबह मेल किया है, तो आज का अखबार तो आ चुका है, तो शाम को कैसे, मतलब ये मैं पढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला आप फेसबुक पर हैं? हूँ। तो ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ आप देखें। और मेरे लिए ये फेसबुक की दुनिया लेखन से जुड़ी हुई एक एलिस इन वंडरलैंड की तरह थी। मैं नहीं जानती थी कि इस तरह से फेसबुक पर भी लोग लिखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। और जब मैंने अपनी कविता देखी तो उस पर उस समय तक कुछ 50 से लगभग ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे, जो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। और मैं ये कहूंगी कि इसी चीज ने मेरे लिए आगे के लिए जो है वो सृजन का रास्ता खोला। हालांकि सृजन का सफर मैंने लगभग 20 साल पहले रफ कॉपी में जरूर शुरू कर चुकी थी, तो रफ कॉपी से दुनिया तक पहुंचने का ये जो सफर है वो फेसबुक के माध्यम से इस छोटी सी घटना ने शुरू किया। तो ये मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती।
0: तो ये आप सुन रहे थे सिफर का सफर। तो आइए आप सुनते हैं इनकी ये रचना।
1: जी, रेडियो विदस्ता की चौथी वर्षगांठ है, बहुत बधाई देते हुए सभी को। और आपने महिला काव्य गोष्ठी से शुरुआत की, तो तमाम नारी शक्ति को मैं समर्पित करती हूँ अपनी गजल। किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं औरत हूँ, किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं औरत हूँ, सफर में धूप के साए से राहत हूँ मैं औरत हूँ।
0: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: सफर की धूप में साए से राहत हूँ मैं औरत हूँ, और हवा आकाश मिट्टी जल अगन भी है जरूरी पर, हवा आकाश मिट्टी जल अगन भी है जरूरी पर, नए जीवन की एक मैं भी जरूरत हूँ
2: मैं औरत हूँ।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
1: बहुत अच्छे। चढ़ूं मैं चाक पर हर बार एक मिट्टी नई बनकर, न सिर्फ महिला शक्ति, सभी लोग मुझे लगता है इससे सहमत होंगे। चढ़ूं मैं चाक पर हर बार एक मिट्टी नई बनकर, मगर हर रूप में केवल मोहब्बत हूँ मैं औरत हूँ।
2: बहुत अच्छे, बहुत
1: अच्छे। नहीं हूँ चीज में कोई सजावट की जरूरत की, नहीं हूँ चीज में कोई सजावट की जरूरत की, रहूं जिस घर में भी उसकी मैं बरकत हूँ मैं औरत हूँ। और आखिरी दो पंक्तियां रखती हूँ कि मैं हूँ वो मोम जो अश्कों की गर्मी से पिघल जाए, मैं हूँ वो मोम जो अश्कों की गर्मी से पिघल जाए, सिफर टकराने पर आऊं तो पर्वत हूँ
2: मैं औरत हूँ। बहुत बढ़िया।
1: किसी सहरा में हरियाली की सूरत हूँ मैं औरत हूँ, सफर की धूप में साए से राहत हूँ।
0: क्या खूब कहा है आपने, बहुत बहुत बेहतरीन। इतनी बारीकी से, इतने करीबी से, इतने नाजुकता से जो आप शब्द कह गए कि मैं वो मोम हूँ जो अश्कों की गर्मी से भी पिघल गया। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। अंजलि जी, वास्तव में पता लगता है कि आपकी कलम की धार क्या है। तो दुनिया आपको सुनना पसंद करती है। आज मैं जानना चाहूंगा अपने रेडियो विदस्ता के जितने श्रोता हैं और दर्शक हैं उनके समक्ष आप क्या सुनना चाहेंगे। आज हम आपको वो सुनाते हैं जो आप सुनना चाहती हैं।
1: अरे वाह, मेरा नाम जोकर का गीत है, जीना यहाँ मरना यहाँ।

0: अगर वो सुना दे आप तो फिल्म बन जाए।
1: निश्चित। तो आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं अंजलि सेफर जी का पसंदीदा, जो इनके दिल के करीब है, वो गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: दोस्तों, हम लोग अभी, मैं आपको एक बार बता दूं, हम आज का जो विशेष कार्यक्रम रेडियो वितस्ता का है, ये विशेष कार्यक्रम रेडियो वितस्ता की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य के बीच में महिला गोष्ठी, जिसके बीच में हमारे मेहमान हमारे साथ में हैं, दिया शर्मा जी, दिव्या असीम कोचर जी और अंजलि सिफर जी, अपनी रंगों की छटा, अपनी कला की छटा से आज के प्रोग्राम को ये लोग रोशन कर रहे हैं। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि हमारे बीच में दिव्या जी हैं, उनसे सुने। मैं आपको एक चीज बताऊं
2: जी सर,
1: कि दिव्या जी, जो हमारे श्रोता हैं और जो हमारे दर्शक हैं, इनसे हमको बहुत प्यार है और इनको हमसे बहुत प्यार है। हुआ यूं कि अरमान दोनों के दिलों में दहक रहे हैं, अरमान दोनों के दिलों में दहक रहे हैं, जो मधुबन में तोता मैना चहक रहे हैं। जो मधुबन में तोता मैना चहक रहे हैं, जब से मिले हो तुम हमसे हम तुमसे, जब से मिले हो तुम हमसे हम तुमसे, तुम भी महक रहे हो,
2: हम
1: भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं। तो आइए, एक नई महक को आपके बीच में पेश कर रहा हूं। अब पहले आपने अपने कानों का रस लिया था, अब इस खुशबू को महसूस कीजिए, और इस खुशबू का नाम है दिव्या असीम कुछ।
2: बहुत शुक्रिया सर। सर, एक गजल के कुछ अशार।

तरफदारी नहीं होती। करें क्या हम जो हमसे ये अदाकारी नहीं होती, करें क्या हम जो हमसे ये अदाकारी नहीं होती। ओ ये लहजा बेरुखी वाला बताओ कौन सह लेता, ये लहजा बेरुखी वाला बताओ कौन सह लेता। अगर कुर्सी तुम्हारे नीचे सरकारी नहीं होती, अगर कुर्सी तुम्हारे नीचे सरकारी नहीं होती। और अभी बात मोहब्बत की थी, चल रही थी, तो मजा भी दर्द भी रुसवाई आ सूरत जगे तड़।

0: अच्छा
1: मोहब्बत के अलावा ऐसी बीमारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर। और मिले गम ख्वार बन मेरे, मगर मालूम है मुझको, मिले गम ख्वार बन मेरे, मगर मालूम है मुझको, सियासत

0: होती। और सर आपको समर्पित करती हूँ दो पंक्तियां। कि रुलाते को हंसा देने का फन सब में नहीं होता, रुलाते को हंसा देने का फन सब में नहीं होता, दिखे आसान पर आसाई फनकारी नहीं होता, दिखे आसान पर आसाई फनकारी नहीं होती। बहुत शुक्रिया सर।
1: आपने ना सियासत के बीच में एक बात कही है और मुझे खतरा है कि हम सियासतदान कहीं इसको ना सुने। खैर मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
0: जी सर,
1: बातचीत का सिलसिला भी हमारा चलता रहे। साथ में हुआ यूं कि एक नवविवाहित दंपति था, हनीमून के लिए वो लोग बाहर जाना था उनको। एक तालाब के पास उन्होंने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है और वो भी उस भीड़ में शामिल हुए। देखते क्या कि वहां पर एक तालाब के बीच में दो तीन बहुत खतरनाक से मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और उन्होंने लिख रखा है कि भाई जो आदमी इसको पार कर जाएगा तैर के उसको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और खुदा ना खास्ता मान लीजिए तैरने वाले को मगरमच्छ खा जाए तो भी 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब पता नहीं क्या हुआ, एकदम वो आदमी तालाब के बीच में गया और बहुत जोर लगा उसके पीछे पीछे मगरमच्छ। वो भागा बहुत, भागा मतलब तैरा बहुत तेजी से, सांस फूली, बुरा हाल, बड़ी मुश्किल से पीछे पीछे मगरमच्छ खाने को भाग रहा है और आगे आगे वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए तैर रहा है किस तरीके से। खैर बहुत ज्यादा जोर लगाया जैसे प्राण निकलने वाले ही हों और किसी तरीके से वो आदमी उसको पार कर गया। जब वो पार कर गया तो उसको लोगों ने बहुत वहां पर उसकी प्रशंसा की कि भी बहुत हिम्मत है आपकी, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप इसको पार कर गए अपनी जान पर खेलकर, जबकि आपकी मौत आपसे चंद इंच दूर थी। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? वो कहता है ये बाद में बताऊंगा, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया। और जब पता लगा धक्का तो
0: पत्नी ने दिया था,
1: उन्होंने दिया था, तो उन्होंने कहा भी आपने ऐसा क्यों किया? कहते देखो ऐसा है ना, अगर जीत गए तो 5 करोड़
0: और अगर
1: चले जाते तो 2 करोड़। तो भी देखो ऐसा है कि हमें तो दोनों तरफ फायदा ही फायदा था, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये है LIC। लेकिन मैं उस बात को नहीं भूलूंगा।
0: लेकिन सर आपने जैसे कहा पत्नियों पर बहुत सी स्टोरीज, जोक्स मुझे कहना चाहिए बने हुए हैं
1: जी,
0: तो पर पत्नियों के दिल की बात कोई नहीं सुनता।
1: अच्छा
0: जी, तो मैं एक दोहा यहाँ रखना चाहूंगी।
1: प्लीज प्लीज।
0: कि कहा चांद गाए कभी, चांद कहा जाता है प्रेमिका जब पत्नी नहीं बनती वो, कि कहा

0: वाह वाह
1: वाह वाह
0: वाह, पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में धाग। मिस्टर कोचर नोट इट, पत्नी जब से वो बनी दिखे चांद में धाग। खैर, आपकी कला में ईश्वर ने कहीं पर कोई भी दाग नहीं रखा। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आपको लोग सुनने के लिए तरसते हैं। मुझे मालूम है बहुत बड़ी बड़ी स्टेजों के ऊपर आपकी मधुर आवाज गूंजती है और आपकी कला के लोग दीवाने हैं, तो इतना पसंद करते हैं लोग आपको, कैसा लगता है?
2: सर, किसी का पसंद किए जाना ऑब्वियसली अच्छा लगता है।
0: क्या पसंद है जो हम आपको आज अपने दर्शकों और अपने श्रोताओं के बीच में आप सुनना पसंद करेंगी?
2: सर, मेरी बेटियों को बहुत पसंद है एक गाना, वो मैं उनके लिए आपके रेडियो स्टेशन से सुनवाना चाहूंगी। उनके लिए
0: उनको मैं चाहूंगा जो गाना आप अपनी बेटियों को समर्पित करना चाहती हैं आज की रेडियो विशेषता के इस विशेष महिला काव्य गोष्ठी के आयोजन के बीच में, आप वो गाना हमारे दर्शकों को एक बार गुनगुना के सुनाइए और फिर वही गाना हम आपके लिए इस रेडियो स्टेशन से। वो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम देख रहे हैं
2: बेटियों को
0: और जो श्रोता सुन रहे हैं वो जानते हैं आपकी आवाज कैसी है।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। और रेडियो वितस्ता के ऊपर इस वक्त हम एक विशेष कार्यक्रम के बीच में सम्मिलित हैं जिसका नाम है सफर एहसासों का। रेडियो वितस्ता की चौथी वर्षगांठ के ऊपर इस कार्यक्रम के आयोजन के बीच में हमारे बीच में जो कवियत्री मौजूद हैं और उन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको भसूड़ी सुनाई है, जो उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बेटियों को समर्पित करते हैं, तो अब इस भसूड़ी के पश्चात आते हैं हमारी अगली कवियत्री के पास में जो हैं अंजलि सिफर जी। मैं जानना चाहूंगा कि वो बेटियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अंजलि जी, आप कई स्तर के ऊपर, कई विशेष मंचों के ऊपर आप कार्यक्रम का संचालन करती हैं, कई किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, तो ये बताइए कि इनमें समावेश किस प्रकार से आप कर पाती हैं इस प्रकार के आयोजनों के बीच में, क्योंकि एक कार्यक्रम के बीच में श्रोता कुछ और होते हैं, अगले कार्यक्रम के इतने श्रोताओं का वर्ग कुछ और होता है और सब श्रोताओं की पसंद अपनी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन संचालन करने वाला तो वही है ना, एक संचालन करता इतने प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर किस तरह से अपने आप को समावेश कर पाता है।
2: जी, आपने जो कार्यक्रमों की बात की, मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना के समय में जिस समय हम सब बंद थे एक तरह से, और कलाकार के अंदर का जो वो कला होती है लोगों से बात करने की, मिलने की, अपनी कविताएं साझा करने की, उसे मैंने एक प्लेटफॉर्म देने का मन किया और एक यूट्यूब चैनल शुरू किया भावांजलि के नाम से, और उस पर स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से तकनीक के जहां नुकसान है वहां फायदे भी हैं, तो किसी भी सिचुएशन के मुझे लगता है नुकसान फायदे दोनों होते हैं
1: जी।
2: तो हमें उसके फायदे को उठाना चाहिए और नुकसान को भूलना चाहिए, तो उस समय में मैंने तकनीक का फायदा उठाया और स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से देश में ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोगों को भी जोड़ा। तो कुछ तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स मैंने किए, जिसमें एक काव्य गोष्ठी थी जिसमें आप यकीन मानेंगे कभी कभी ऐसे कवि शामिल हुए जिन्होंने कहा कि हमने पहली बार किसी मंच पर अपना काव्य पाठ किया है, और उसके बाद उनका सफर, जिसे कहें कि उनके सफर ने गति पकड़ी। वहां मैंने 15 साल के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के कलाकारों को आमंत्रित किया, और बस खुशनसीबी ये रही कि जिसे भी मैंने एक आवाज दी तो उन्होंने मेरा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और वो कार्यक्रम में आए।
1: मेरे भी कुछ नसीब है कि मैं पहली बार आज आपके साथ में काव्य गोष्ठी में शामिल हुआ हूँ, और प्रार्थना भी कर रहा हूँ, उम्मीद भी कर रहा हूँ शायद मेरे भी ये जो लाइन है थोड़ा सा गति पकड़ गई।
2: बहुत खुश नसीबी सर हम सभी की है कि आज हम रेडियो वितस्ता के श्रोताओं से मुखातिब हैं
1: जी।
2: बहुत ही बेहतरीन श्रोतागण हमें उस पार से सुन रहे हैं। तो ये कुछ सफर रहा कोरोना के समय में, देश विदेश में बहुत से लोगों को स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से जोड़ा, उनके बारे में जाना, जो साक्षात्कार किए उस साक्षात्कार के बाद सुनने वाले तो जरूर लाभान्वित होते होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कहूँ तो खाली झोली लेकर अगर मैं बैठती थी तो बहुत सी नॉलेज की, अनुभवों की भरी हुई पोटली लेकर मैं कार्यक्रम को समाप्त करती थी। तो ये मेरा सफर रहा कोरोना के समय में भावांजलि का, जो अभी भी जारी है, हालांकि हफ्ते में एक कार्यक्रम तक ही सीमित रह गया है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं और श्रोताओं आप भी सुन रहे हैं कि अंजलि जी ने भावांजलि के माध्यम से जो अनुभव अपनी झोली के बीच में समेटे हैं उनका कितना लाभ इनको प्राप्त हुआ है, और इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे एक चीज बताऊं कि आज का इंसान जो है ना बहुत खुदगर्ज सा हो गया है
2: जी।
1: आज का इंसान ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता जिसमें उसका फायदा ना हो,
2: हर
1: चीज में अपना लाभ ढूंढता है कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, इसको किस चीज से मतलब नहीं है, न कायदे की जरूरत है न वायदे की जरूरत है, बड़ा खुदगर्ज इंसान है, इसे बस फायदे की जरूरत है। और आपने जो बात बताई मुझे बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग विभिन्न मंचों से जिसके ऊपर आप विदेशों तक के बीच में अपनी पहुंच बनाने में सक्षम हुए हैं। मैं रेडियो वितस्ता की शुभकामनाएं आपको देता हूं कि इस परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आपको हैं, और ईश्वर करे दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी ये जो भावांजलि है ये आगे से आगे बढ़ती चली जाए, और जिस प्रकार से कई ऐसे लोगों को आप मंच प्रदान करती हैं जिन्होंने पहली बार मंच की शक्ल देखी हो, आप ईश्वर सामर्थ्य दे कि आप नए नए लोगों को इस दिशा के बीच में आगे बढ़ाते चले जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बेटियों के विषय में क्या विचार रखती हैं और क्या कहना चाहती हैं?
2: जी सर, बड़े कह गए हैं कि बेटियां तो सबकी साझा होती हैं, तो सभी बेटियों के लिए और हर औरत माँ हो या ना पत्नी हो या ना बेटी जरूर होती है, होती ही है, तो हर बेटी को समर्पित करती हूँ अपनी ये गजल गीत के रूप में। फूलों से लिपटी

0: है घर वो खुश नसीब, हो पैदा जहां पे ये, है घर वो खुश नसीब, हो पैदा जहां पे ये, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां, और वो खुश हो तो सुकून, दुखी हो जरा भी तो

0: और ये कहती हूँ कि मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, मजमून जिनका होता है बस प्यार और अदब, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती हैं बेटियां, वो खुशनुमा सी चिट्ठियां होती हैं बेटियां, कोमल छुअन से इनकी तो सिल जाए जख्म भी, कोमल छुअन से इनकी तो सिल जाए जख्म भी, रेशम की ऐसी डोरियां होती हैं बेटियां।
1: बहुत बहुत सुंदर।
0: सोचती हूँ कि श्रोतागण भी मेरे साथ गुनगुना रहे होंगे। और ये शेर देखिएगा कि बन जाती है ये पल में मेरी नानी मेरी माँ, बन जाती है ये पल

0: गुनगुनी गर्मी की बारिशें।
1: सर्दी की धूप गुनगुनी गर्मी की बारिशें।
0: जी, सर्दी की धूप गुनगुनी गर्मी की बारिशें, जिनसे छने वो खिड़कियां होती हैं बेटियां, जिनसे छने वो खिड़कियां होती हैं बेटियां। और बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी, ये भी एक पूजा कर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब।
0: बेटी को पालना भी है उसकी ही बंदगी, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटी। और बहुत कुछ कहा जा सकता है बेटियों के बारे में, लेकिन आखिरी दो पंक्तियां रखती हूँ कि जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सफर, जिनको खुदा भी खाली नहीं मोड़ता सफर, खुशियों की ऐसी अर्जियां होती हैं बेटियां, पुरखों की भेजी थपकियां होती हैं बेटियां, जन्नत को जाती सीढ़ियां होती हैं बेटियां, पिछले जन्म की नेकियां होती हैं बेटियां।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अंजलि जी, आप इस गजल को आप पढ़ रही थी, कह रही थी, और मैं देख रहा था। जितने शब्द आपने कहे वो सब एक चलचित्र की भांति मेरे मस्तिष्क में चल रहे थे। क्या खूब आपने बातें कही हैं, कहां उनको खिड़कियां कहां, और लास्ट के बीच में, अंत के बीच में जो आपने उनको एक उपमा दे दी है कि ये वो अर्जियां हैं जिनको ईश्वर भी खाली नहीं लौटाता। बहुत सुंदर, बहुत ही।
0: जी, मैंने जिया है इस गजल को, क्योंकि मेरे पास दो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां, तो मैं जीती हूँ इस गजल को।
1: आप खुशकिस्मत हैं जिनके पास दो बेटियां हैं। बेटियां होना तो उन्हीं को मिलता है जिनको ऊपर वाला
0: बिल्कुल
1: विशेष रूप से नवाजता है, उन्हीं को बेटियां मिलती हैं। तो आइए दर्शकों और जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे जितने भी श्रोता, अब मैं आपको सुनाता हूँ अंजलि सिफर जी का मन पसंदीदा ये गीत।

0: रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।
1: तो दोस्तों, इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमें डाउन टू अर्थ यानी जमीन के साथ में जुड़ना पड़ेगा, अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। गुरूर नाम की चीज क्या होती है उसको हमें भूलना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरूर में इंसान को तो इंसान नहीं दिखता। हमें दुनिया और भी देखनी है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे अपनी छत पर चढ़कर अपना मकान नहीं दिखता। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, उनकी तरफ से जो कभी किसी को कभी भी कुछ भी कह नहीं पाते, मेरा मतलब यह है कि बेजुबान जानवर, चाहे वो पशु पक्षी, गाय, कुत्ता, कुछ भी हो, जो भी है तो ईश्वर का ही अंश। आत्मा तो उनके अंदर भी ईश्वर नहीं दी है, वो तो अपने मुंह से कुछ नहीं कह पाएंगे। ये विशेषता ईश्वर ने सिर्फ इंसान को ही दी है कि वो अपनी जुबान से, अपनी भाषा से अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। लेकिन दुख, दर्द, तकलीफ तो उनको भी होती है जिनकी जुबान नहीं होती। तो मेरी इस आवाज को सुनने वाले रेडियो वितस्ता के जितने भी श्रोता हैं, उनसे ये आग्रह है कि अगर आपको कहीं पर, कोई सड़क पर, मोहल्ले में, गली में, कहीं पर भी आपको कोई ऐसा पशु दिखता है जो घायल है, बीमार है, असमर्थ है, तो उसकी सहायता कीजिए। हो सके उसकी मरहम पट्टी कीजिए, हो सके तो उसको इलाज के लिए किसी नजदीकी अस्पताल में ले जाएं। क्योंकि यकीन मानिए, मेजबान की सहायता आप करेंगे ना, तो आपकी सहायता ऊपर वाला करेगा। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी अगली रचना के लिए इस वक्त आ गए हैं फिर दोबारा से दिया शर्मा जी के पास में। तो दिया जी, अब आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाना पसंद करेंगे?
2: मैं एक रचना रखना चाहूंगी, दिल को तेरे कागजात कर दूं, दिल को तेरे कागजात कर दूं, आंखों को अपनी दवात कर दूं, दिल को तेरे कागजात कर दूं, आंखों को अपनी दवात कर दूं, आ आ आके पहलू में बैठ तो सही, जो किसी ने कभी की नहीं, मैं वो बात कर दूं।
1: क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी।
2: आ आके पहलू में बैठ तो सही,
1: जो किसी ने की नहीं, मैं वो बात कर दूं।
2: किसी ने कभी की नहीं, मैं वो बात कर दूं। तुम उससे मशविरा तो कर, तू मुझसे मशविरा तो कर, जो तू चाहता है पेश वो सौगात कर दूं। तू मुझसे मशविरा तो कर, जो तू चाहता है पेश वो सौगात कर दूं। तू माथे पे शिकन न ला, तू माथे पे शिकन न ला, आजा मैं मुट्ठी में हालात कर दूं।
1: वाह, क्या बात, क्या बात।
2: तू माथे पे शिकन न ला, मैं मुट्ठी में हालात कर दूं। तू एक बार जुबां से कह तो सही, तू एक बार जुबां से कह तो सही, मैं तेरे नाम अपने दिन रात कर दूं।
1: वाह, बहुत अच्छा।
2: तू एक बार जुबां से कह तो सही, मैं तेरे नाम अपने दिन रात कर दूं। तू ज्यादा सोच मत, तू ज्यादा सोच मत, मैं तुझ पे कुर्बान अपने सब जज्बात कर दूं।
1: वाह वाह वाह, मैं तुझ पे कुर्बान अपने सब जज्बात कर दूं,
2: मैं तुझ पे कुर्बान अपने सब जज्बात कर दूं, आजा मैं मुट्ठी में हालात कर दूं।
1: क्या बात, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तू खुल के खुल तो सही मेरे सामने, तू खुल के खुल तो सही मेरे सामने, कहीं ये ना हो कि मैं कोई सवालात कर दूं।
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, डराने की एक भरसक कोशिश। बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी।
2: तू खुल के खुल तो सही मेरे सामने, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझसे कोई सवालात कर दूं। सुन सुन, तू दुश्मनों को अपने छोड़ना मत, सुन तू दुश्मनों को अपने छोड़ना मत, वरना ऐसा ना हो कि मैं कोई वारदात कर दूं।
1: क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है।
2: वरना ऐसा ना हो कि मैं कोई वारदात कर दूं जो किसी ने कभी की नहीं, मैं वो बात कर दूं, आजा मैं मुट्ठी में हालात कर दूं।
1: क्या बात है शुक्रिया। वस्त्र बहुत खूबसूरत शब्द और बहुत सुंदर सिमाला के बीच में पिरो कर दिया शर्मा हमें सुना रही थी कि मुट्ठी में हालात कर।
2: मुझको लगता है नारी इतनी सक्षम है कि वो मुट्ठी में हालात कर सके।
1: अजी मुट्ठी में नारी जो पति को कर लेती है तो हालात तो बड़ी बात है।
3: नहीं होते सर, एग्जांपल देख लो, दिव्या का अनुभव बोल रहा है सर।
1: आपको एक चीज बताता हूँ, जरा गौर फरमाइए कि मुट्ठियों में कांच के टुकड़े दबा कर देखिए। मुट्ठियों में कांच के टुकड़े दबा कर देखिए, जब लहू रिसने लगे तब मुस्कुरा कर देखिए।
2: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जब लहू रिसने लगे तब मुस्कुरा कर देखिए। और आपने जो बात कही थी मुट्ठी में हालात, हालात महिलाओं की तो कोई मतलब बात कहने वाली है ही नहीं, वो तो किस चीज को वो मुट्ठी में नहीं कर सकती, हर चीज को कर सकती। मैं आपको बताता हूँ कि उलझनों का दास बनकर खुद को समझाना पड़ा। उलझनों का दास बनकर खुद को समझाना पड़ा, जिस जगह आना नहीं था उसी जगह आना पड़ा।
2: क्या बात,
1: चाहे जितना काटिए इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, चाहे जितना काटिए इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, मन के बंजर खेत में यदि लोभ का दाना पड़ा।
2: बहुत
1: मन के बंजर खेत में यदि लोभ का दाना पड़ा, तो लोभ का दाना तो हमारे अंदर श्रोताओं पढ़ ही चुका है, और मैं फिर एक बार उस लोभ के ही वशीभूत आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारी आज की अन्य जो मेहमान हैं दिव्या बसीन कोछड़ जी को, कि आज की वो अंतिम रचना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि कार्यक्रम और समय हमें आपत्ति इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और ज्यादा लंबा खींच सकें। तो अब धीरे धीरे ये कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। आज की अंतिम रचना हम सुनेंगे दिव्या भसीन कोछड़ जी से।
4: शुक्रिया सर। सर ये रचना मेरे मन के बहुत करीब है, इसका शीर्षक है पिताजी की डायरी।
1: हाँ मुझे याद आया, ये जो इनकी रचना है पिताजी की डायरी वास्तव में बहुत हृदय स्पर्शी रचना है, और घर के सारे हालात इन्होंने अपने पिताजी की डायरी के बीच में लिख छोड़े हैं। यकीन नहीं होता, आप सुन लीजिए। लीजिए
4: ये पिताजी की डायरी को रिलेट कर पाएंगे बहुत से वो बच्चे जो 80s 90s में पैदा हुए थे। उस समय हमारे पिताजी के पास गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, डायरी हुआ करती थी, और वो महज एक डायरी नहीं थी, जिंदगी का लेखा जोखा था। तो उस पे पंक्तियां रखती हूं कि जब हाथ में उठाई पिताजी की डायरी,

0: बतियाई मुस्कुराई पिताजी की डायरी।
1: क्या सोच रही थी उसमें कि क्या खोलूंगी और क्या निकलेगा। बती

और बहुत से रिश्तेदारों के नाम, नंबर और पते के साथ। रिश्तों को थाम लो लेकिन नंबर पते कहें।

खुशबू से कब नहाई पिताजी की डायरी। और लिखा क्या था कि शादी की रस्म में खर्च शगुन के हिसाब सब। शादी की रस्म में खर्च शगुन के हिसाब सब। यादों में खींच लाई पिताजी की डायरी। यादों में खींच लाई पिताजी की डायरी। और लिखे तो हाशियों में भी कितने हिसाब थे। लिखे तो हाशियों में भी कितने हिसाब थे। पूरी में पढ़ न पाई पिताजी की डायरी। पूरी में पढ़ न पाई पिताजी की डायरी। और मजबूर सी दिखी कहीं किश्तों के बोझ से। मजबूर सी दिखी कहीं किश्तों के बोझ से। मैंने गले लगाई पिताजी की डायरी। मैंने गले लगाई पिताजी की डायरी। बहुत शुक्रिया दीदी। और

0: हमारी ओर से रेडियो दस्ता के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद इतनी खूबसूरत रचना हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए। तो ये जो हम सुन रहे थे अभी पिताजी की डायरी, हृदय स्पर्शी सारी भावनाओं को बयान करती हुई बिना कुछ लिखे हुए भी सब कुछ कह जाती हुई, ये थी दिव्या भसीन कोछड़।
1: मैं चाहती हूँ ये गाना मेरे पतिदेव को समर्पित किया जाए। गाना कुछ यूं है कि सारी रात तेरा तक नियरा, तारे आ तो कुछ चनवे, सारी रात तेरा तक नियरा, तारे आ तो कुछ चनवे।

0: तो पूछ जाने दे।
1: आप एक और भी तो कह रही थी हिंदी गीत।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: वो कौन सा गीत था जो आप समर्पित करना चाहती थी? दिव्या भसीन कोछड़ जी, हम इनके अनुरोध के ऊपर ये गीत इनके पतिदेव जयंत कोछड़ जी को समर्पित करते हैं।

0: आज हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। आइए, मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे रेडियो विदस्ता के फाउंडर डायरेक्टर श्री भरत सुपुरी साहब को कि वो रेडियो विदस्ता की चौथी वर्षगांठ के ऊपर अपना संदेश हमारे दर्शकों और हमारे श्रोताओं को क्या देते हैं। श्री भरत सुपुरी साहब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया नरेश शर्मा जी। सबसे पहले मैं आज के हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रेडियो वितस्ता स्टूडियो में आए और आज रेडियो वितस्ता की चौथी वर्षगांठ पर एक इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दी है, मुझे पूरी आशा है हमारे सभी सुनने वालों को ये प्रस्तुति पसंद आएगी। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से और रेडियो वितस्ता की टीम की ओर से देश विदेश में रेडियो वितस्ता को सुनने वालों को चौथी वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। चार साल का परिश्रम और ये चार साल कैसे बीते ये श्रेय आपको जाता है जिन्होंने रेडियो वितस्ता को सराहा, सुना और साथ में टीम रेडियो वितस्ता को भी ये श्रेय जाता है जिन्होंने निस्वार्थ रेडियो वितस्ता को अपना साथ दे दिया। रेडियो वितस्ता का प्रसारण 31 अगस्त 2018 को शुरू हुआ था जिसमें अंबाला के लोगों के हित के बारे में बात की गई और बिना किसी आय के ये रेडियो स्टेशन पिछले चार साल में काम करता रहा। सिर्फ एक जनून है कि हम अंबाला के लिए और अंबाला के वासियों के लिए एक आवाज बने। हम कहते हैं ये वॉइस फॉर वॉइसलेस है, उन लोगों के लिए ये आवाज है जो कुछ कहना चाहते हैं, जो अपने समाज में कुछ योगदान देना चाहते हैं। आज तक हमने रेडियो वितस्ता पर विभिन्न कार्यक्रम पेश किए। गीत संगीत के अलावा जो महत्वपूर्ण हमने कार्यक्रम पेश किए वो है वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में, कैंसर अवेयरनेस के बारे में हमने कार्यक्रम बनाए, प्लास्टिक का प्रयोग ना हो यानी हम अपने पर्यावरण को बचा सके उसके लिए भी हमने कार्यक्रम बनाए और प्रसारित किए, युवा उत्थान के लिए हमने कार्यक्रम बनाए ताकि युवाओं को हम उन संस्कारों पर चलने के लिए प्रेरित करें जिससे हमारी देश की उन्नति हो और हमारा कल्चर है जो हमारी संस्कृति है वो आगे बढ़े। कोविड के समय में हमने कोविड अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम किए और पूरे देश में हमने बहुत सारे लोगों के साथ बात की और उस बात को हमने प्रेरणा स्वरूप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उन प्रोग्राम्स को प्रसारित किया। विश्व भर के कलाकारों को हमने जगह दी और उनकी आवाज को हमने रेडियो वितस्ता के माध्यम से साज और आवाज कार्यक्रम, गुप्तगु और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन हमारे प्रोग्राम हेड आजय नरेश शर्मा जी ने किया। एक आवाज जिसका नाम यहां लेना बहुत ही आवश्यक है वो है आदरणीय रमेश मराठा जी। रमेश मराठा जी एक ऐसी सुनहरी आवाज है जिस आवाज ने रेडियो वितस्ता को एक अलग पहचान दी। उनकी आवाज में आप बहुत बार अलग अलग और विभिन्न कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं जिनमें खास करके सुहाना सफर रमेश मराठा के संग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं और वो मन की बात आज तक हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से हमेशा प्रसारित करते रहे हैं। आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि रेडियो वितस्ता का जब विस्तार होगा तो बहुत सारे नए प्रोग्राम की कल्पना हमने की है जिसके लिए हम प्रयासरत है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके बीच में आके आपकी आवाज के माध्यम से रेडियो वितस्ता पर प्रसारण करेंगे। देशभक्ति के प्रोग्राम हमने प्रसारित किए जिसमें देश की आवाज, सरफरोशी की तमन्ना या कुछ उन्हें भी याद कर लो या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके का कार्यक्रम हमने पेश किए।

0: ताकि हम देशभक्ति की बात करें और देशभक्ति देशवासियों में हम जीवित रखें। थिएटर और स्टेज को हमने रेडियो नाटकों के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड के कलाकार स्टूडियो में आके अपनी आवाज देके हमने रेडियो नाटक रिकॉर्ड किए, जिसमें से एक नाटक हम आप तक पहुंचा पाए हैं। फेसबुक पेज में हमने लाइव शोज का सिलसिला शुरू किया जब लॉकडाउन था, और हमने 90 से ज्यादा शोज रेडियो विदस्ता के फेसबुक पेज पे किए, और आने वाले दिनों में हम 100वां शो भी जल्दी करने वाले हैं। और आपको मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इन शोज के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ा रेडियो विदस्ता के साथ। आशा करता हूं कि आपका ये प्यार और स्नेह हमें मिलता रहेगा, और वादा करते हैं कि हम आपके लिए ये आवाज जीवित रखेंगे और आपकी बात रेडियो विदस्ता के माध्यम से आप तक और पूरे विश्व तक पहुंचाते रहे। आखिर में एक बार फिर रेडियो विदस्ता की चौथी वर्षगांठ पर सभी सुनने वालों को देश विदेश में बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम जो अभी आप सुन रहे थे, महिला काव्य गोष्ठी, इस काव्य गोष्ठी के बीच में रेडियो विदस्ता के स्टूडियो के बीच में हमारे जो मेहमान आए, अंजलि सिफर जी, दिया शर्मा जी और दिव्या भसीन कोचर जी, मैं हृदय की गहराइयों से रेडियो विदस्ता की ओर से और अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दीजिए अपने रेडियो नरेश शर्मा को इजाजत, फिर मिलता हूँ किसी और प्रोग्राम के बीच में आपके लिए कुछ और नई पेशकश लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।
2: अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूँ अपूर्वा दास, रेडियो वितस्ता परिवार से।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश मराठ।

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों में।

0: वो दिन कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तसव्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाए और तड़पे, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते

ये एक फासला है, किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

झूठी है ये दो पल का जीवन, इसमें बिछड़ना एक हकीकत है, मिलना तो सिर्फ बहाना है। अंधेरे से मायूस ना हो, ये सफर है सूरज का, जिसमें ढल जाना एक हकीकत है, चढ़ना तो सिर्फ बहाना है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:05। आप सुन रहे थे रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, और अब हमारा ये प्रसारण अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आया होगा और इसने आपके दिन को और खूबसूरत और खुशनुमा बनाया होगा। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे युग में, जहां हर इंसान किसी न किसी दौड़ में शामिल है, वहां एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मानसिक शांति। मन की शांति सिर्फ एक व्यक्तिगत जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे समाज की नींव है। जब एक इंसान का मन शांत होता है, तभी वो सही निर्णय ले पाता है, सही सोच पाता है और अपने आसपास सकारात्मक बदलाव ला पाता है। अशांत मन क्रोध, हिंसा और गलत फहमियों को जन्म देता है, जबकि शांत मन सहनशीलता, समझदारी और प्रेम फैलाता है। समाज में जितने भी बड़े और अच्छे बदलाव हुए हैं, वे उन्हीं लोगों के प्रयासों से हुए हैं जिनके मन में स्थिरता और स्पष्टता थी। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। जब मन तनावग्रस्त रहता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे रक्तचाप, हृदय रोग, नींद की कमी और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके विपरीत, जब मन शांत होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है, नींद अच्छी आ जाती है और व्यायाम से व्यक्ति समग्र रूप से स्वस्थ रहता है। मन और शरीर का यह संबंध इतना गहरा है कि एक के बिना दूसरे की पूर्णता संभव नहीं है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं मानसिक शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। कोशिश करते हैं कि हम आपको सुझाव भी देने की कोशिश करते हैं। निर्णय आपका होगा, अगर आपको सही लगता है तो आप इन सुझावों पर काम कर सकते हैं। पहला, रोजाना कुछ समय ध्यान यानी मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की प्रक्रिया के लिए निकालें। दूसरा, प्रकृति के करीब जाएं, पेड़ पौधों, नदियों और खुली हवा में समय बिताएं। तीसरा, अपनों के साथ संवाद करें, मन की बात साझा करें, अकेलापन न पालें। तीसरा, चौथा, संगीत सुने जैसे वितस्ता जैसे प्रसारण जो मन को सुकून दे सकते हैं। और आखिरी, पर्याप्त नींद लें और शरीर को आराम दें। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें, ताकि हम खुद भी स्वस्थ रहें और अपने समाज व देश को भी एक बेहतर दिशा दे सकें। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, जो बहुत ही संवेदनशील विषय था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषय पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक भी हमें जरूर भेजिएगा। जाने से पहले, वितस्ता की धारा जैसी बहती हुई एक छोटी सी शायरी आप सभी के नजर। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की लहरों में बसा है अपनापन, हर सुर में गुला है मोहब्बत का सावन। वितस्ता की लहरों में बसा है अपनापन, हर सुर में गुला है मोहब्बत का सावन। दूर रहकर भी दिलों को जोड़ता है यह आवाज, दूर रहकर भी दिलों को जोड़ती है यह आवाज। यही तो है वितस्ता का असली पैगाम, यही तो वितस्ता का है असली पैगाम। तो दोस्तों, ये था आज का विषय और आज की पंक्तियां। जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 19 सितंबर 2026 रविवार, छुट्टी के दिन, हम जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में अब सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, और कल रविवार है, कल आप शब्द और गुरबानी भी सुनेंगे। 7 बजे होगा कार्यक्रम आओ गांव चलें एपिसोड 1,
गांव की जिंदगी और साथ में हमारी संस्कृति का कार्यक्रम भी आप सुन पाएंगे। 8:30 बजे कृष्ण, 8:30 बजे आप सुनेंगे किन्नी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 12, शीर्षक होगा विरासत रिश्तों की। 9:30 बजे दिल दिया गला पंजाबी में कार्यक्रम होगा, प्रस्तुत करेंगे लाड़ी ललित शर्मा लाड़ी। 10:10 पर काव्य गोष्ठी रिदम डडियाला के साथ पेश करेंगे भारत सोपोरी और संगीत की सभा जारी रहेंगे। 2:00 बजे आप सुनेंगे कृषि समाचार और 6:00 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, 7:00 बजे होगा रेट्रो हिट्स कार्यक्रम एपिसोड 13, शीर्षक होगा जिद, पेश करेंगे आरजे किरनी और 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है सजदू में प्रभु को ढूंढते रहे। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये जानकारी जो मैं आपके लिए लाया, इसको तैयार किया टीम रेडियो वितस्ता की कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के इस प्रसारण को यही देते हैं विराम। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आपसे अब चाहता हूं इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।